आज का बीत गया उतने दिन तरब ताज एक्सप्रेस है कुरे नगद जवान से लगा दीजिए तो मुझे तो अगर मगर नारे की बीत रहेंगे बेटा ब्रेड बना जुदुंगे बेटा तो बसी में आज का बीत नारे की बीत रहेंगे बेटा ब्रेड बना चेक इन चेक इन चेक इन ये संजोर ने लंबा फेसबुक के ताज एफएम में दूसरी ओर रखे ही अनागो लंबा व्हाट्सएप इन 0745 824 965 Agri no tegle rosa na lombo el choro. Jita bono 4.4 mwenye ugole kibitin dani gole magitu tuna no 4.4. Negle glinte ni lombo jem kibitiri ya zokundani. Manga na lenye uruwa ni mitin dano.